एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो।

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले।

0: शुक्रिया शमी जी।
1: वाह जी वाह, देख लो मतलब गल कितो कितने पहुंच गई, ब्याह शादी दे आ गई गल, क्या बता, व्हाट अ ब्यूटी, मोहब्बत का हाल हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, शर्मा जी क्या बात है, और बहुत खूबसूरत कलाम हमेशा की तरह। शुक्रिया शर्मा जी इस दोनों जड़िया दोनों गीतों के लिए, एक तो एक वध के चढ़ते गीत सन, और इंजी तुसी लिखते रहो, इंजी मुस्कुराहटा जड़िया बढ़ते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जिंदाबाद है जी। जिमी कार्टर साहब मोहब्बत भेज रहे ने, कहते जी कमाल है, बहुत वधिया प्रोग्राम चल रहा है, ते खालसा राज इस नाम तो वाह मोहब्बत आई है। वह लिखते ने कि सत श्रीकाल शमी बाई जी, जी सत श्रीकाल जी, जी आया नू खुश आमदीद। सो दोस्तों इस तरह ही भाई जगजीत सिंह जी, वह कहते दुआबा ग्रुप नू भाई सत श्रीकाल जी, आया नू भाई सत श्रीकाल जी, बहुत बहुत स्वागत। ते सैनी साहब टकोरा कर रहे ने नाल दी नाल, और बहुत खूबसूरत माहौल जिहड़ा दोस्तों बनिया होया। तो अज विशा जिहड़ा जी वह आपां नू पता ही लग ही गया, हुण तक तो मैनू लग ही गया, हुण मैनू लगदा पता, क्योंकि मुल दी लड़ाई यह विशा है। मुल दियां बहुत सारी चीजां हो सकदियां ने, लगभग जे असीं मार्केट यूज कर रहे हैं, मार्केट दे विच जाने हैं, बाजार जाने हैं, हर चीज मुल दी है। एक भाई कहिंदा पिंडां वालिआं ते शहरां वालिआं च इह फर्क हुंदा है, पिंडां वालिआं नूं कोई भी चीज मुल लैण दी जरूरत नहीं हुंदी, सब कुछ पिंड कोई अपने आप दे विच सैल्फ सस्टेनेबल यूनिट हुंदा रिहा है, पहला किसे जमाने च, हुण नहीं, हुण तां चलो उह वी निर्भर ने, बाजार दे उत्ते निर्भर ने। तो जे तुसी कोई चीज मुल खरीद रहे हो तो भावें तुसी पिंड च बैठे हो तो भी तुसी शहरी मने जाओगे, क्योंकि मुल दुध मुल दा आ रहा है, और बाकी खाना पीना चलो हैगा ही है, हर चीज जिहड़ी है सब्जी भाजी जिहड़ियां बेसिक चीजा ने सारियां मुल खरीद के जे असी लिया रहे हां, तो फिर आपां किसे भी पद्धर ते पिंड वाले नहीं कहे जा सकते, फिर शहरी ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि शहरियां नूं इह हुंदा सी पहला कि वह घरे गली दे विच जां अपने बरांडे दे विच मझ तां बन नहीं सकते, क्योंकि जां मझ रहेगी जां आप रहणगे, दोनों कट्ठे नहीं रह सकते। मैं समझ गया मझ ने हुणे आवाज कर के बच्चे तां जमा नहीं रख सकते, नहीं ना उधर नहीं रख सकते, तुहानूं पता ही है, एक्टिवा स्कूटरी सगाटी रख लैणगे, क्योंकि उन्नी की जगह च बकरी खड़ जांदी है, पर नहीं वह नहीं रखनी, अपने स्कूटरी रखनी है जिहड़ी तेल भी पीवे, नहीं रखणगे भाई तेनू नहीं रखणगे, आ ना भेड़ ना बकरी इन्हां नूं नहीं रख्या जा सकता, क्योंकि यह खर्चे वाला काम है, कित्थों इन्हां नूं पट्ठे पाउणे आ, उत्तों पट्ठे पाते फिर उह कहिंदे वी बकरी जिहड़ी है उह दुध दिंदी है पर मींगणा पा दिंदी है। पर चलो अगली दा सुभाअ है भाई, जिहा जिहा वी हैगा हुण चलो क्या करिए, उहनूं उहदे नाल आपां लड़ाई नहीं लै सकदे, क्यों पंगा उहदा जिहड़ा रिश्तेदार अग्गे बोक तुहानूं पता ही है, सदीक साहब ने कहा सी आ बुड्ढा बग्गा ले लिया चिट्टी हाथ बगदे पागे, बस ओ मझां गऊआं सारियां घरां चो बाहर कढ दित्तियां गईआं, पशु धन जिहड़ा ओ हुण ओह धन नहीं रहा, धन धन नहीं हो गई, उहने हथ खड़े कर ले, और कमी किसे चीज दी नहीं रही, इह बड़ी अजीब चीज है, मतलब डंगर कोई नहीं हैगा पर दुध पूरा है, जिन्ना मर्जी दुध चाहिदा होवे, मक्खन चाहिदा, पनीर चाहिदा, नेरियां आईयां पईयां, मां कहिंदा हड़ आ जांदा, कोई चक्कर नहीं, लोकी तां सड़क तों आउंदे दुध नाल, कहिंदा महाराज ने उहने चक्क लो, तो इह सिस्टम है, पता नहीं की हो रहा है, किवें हो रहा है, आपां इहदे ते गल कर नहीं सकदे, क्योंकि इह गल जे कीती जाएगी तां फिर उही कम हो जाणा, ओह लै ली फिर मुल दी लड़ाई, पा लिया पंगा चंगा रह गया। चलो खैर दोस्तों, तुसी प्रोग्राम च शामिल हो सकते हो, नंबर करके डायल चिर समाइल हाथ मोबाइल 9478355591, आपां 10 बजे तक लाइव हां, 10 बजे तो तुरंत बाद इस प्रोग्राम तो बाद भारत साहब ते सैनी साहब की गलबात सुणांगे, ते उहनां वल्लों बहुत ही खूबसूरत विषय के उत्ते, अहम विषय के उत्ते गलबात जिहड़ी रिकॉर्ड की गई है, सैनी साहब का ते भारत साहब का शुक्रिया, और बैक टू बैक प्रोग्राम जिहड़ा होएगा इस तो बाद। सो दोस्तो एक ना बाई जी ने गीत लिखा सी, गूंगे गीत, गूंगे गीत एक किताब का नाम सी, बुक का नाम है, बुक जानी किताब जानी पोथी, उहदा एक आहो उहदे विच इह कविता मैनूं पढ़न नूं मिली, हुणे हुणे मिली है पढ़न नूं, पहलां भी पढ़ी है, उह लिखदे आ जिन्नी देर तक बाईआं दा फोन आउंदा है, मित्रां दा फोन आउंदा है, आपां जिहड़ी कविता सांझी करदे आ, उहनूं पता ही है कविता जिहड़ी है उह अपने आप दे विच इक खूबसूरत जिहड़ी है सिनफ मन्नी गई है साहित्य दी, टाइटल है अनोखा झगड़ा, अनोखा झगड़ा। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि झगड़ा उन्हें चीजा च हो रहा है जो आप जो चाहिए तो भी गलबात नहीं कर सकती पर कवि तो कवि है भाई वह ले आते गल बुला देंगे जिहड़ा नहीं बोलता उन्हें भी बुला देंगे जानी कि लड़ाई हो रही है कैंची की सूई की ना कैंची बोले ना सूई बोले थानू पता ही है पर कवि की नज़र दे विच उना दे विच अगर झगड़ा होवे तां किहो जिहा झगड़ा वह लिखते हैं वैसे किन्हां दी है भी आपां गल करांगे तुसीं गैस करियो कमेंट बॉक्स दस्सियो जिहड़ी मैं कविता पढ़ने वाला अनोखा झगड़ा इहदे कवि कौन ने सर्च मार सकते हो गूगल दे तो कैंची ने हैंकड़ विच बोली इउं सूई नूं मारी मेरे सामें तू की वटे मुछ छलेडो नारी मूह घसी सिर पाटी पतली तीली सुकड़ी पुगड़ी सल दिलां नूं लंघण वाली हथ पापण हथियारी सूई नूं कैंची ने ताना मारिया ओ मैं राणी हां जग ते अड़िए आदों राज कमावां वेतरन दी लख व्यूत जाना सो शिंगार बनावा मेरे बाद जो परे पंचायतां रहिंदियां ने अदवाटे उस परे विच पए ना पूरी जिस विच मैं ना जावा दर्जी मैनू दाती आखण दर्जी मैनू दाती आखण अन्न खवाउण वाली नारा मैनू कहण प्यारी फब फवाउण वाली मैं सारे जग दे मन भाणी हर कोई मैनू चाहे सहां फैशन बन सवन्ने मैं बनाउण वाली वेखता अपने वल सूईए तू की तू माण पर खावे दुखी होई है दुनिया तेथो दुखी होई है दुनिया तेथो वज वज रत वगावे जगते जेकर मैं ना होवा कोई ना पुछे तेनू नी कम जाते शर्म होई ता चप्पनी विच डुब जावे लो जी कैंची ने सूई नूं गल्लां कह दित्तियां पंगा पै गया मुल दी लड़ाई लै ली तू बैठी रहे भाई सूई सूई है तू कैंची है पर नहीं कहूं फिर हुण अगे सूई कित्थे चुप रहि जाणी तुहानूं पता ही है सुन सुन के वेख रता अपने वल सूईए की तू माण रखावे दुखी होई है दुनिया तेथों वज वज रत वगावे जगते जेकर मैं ना होवां कोई ना पुछे तेनू नीकम जाते शर्म होई तां चप्पनी विच डुब जावे सुन सुन के सूई दियां गल्लां सूई सतके कुई नी मैं सदा करावां एका तू पवावे दूई सुनिया नहीं तू परख परख के आख्या एदा नामा कैंची कोझी कप्पे पाड़े सीए सुचजी सूई और सूई ने जवाब दिता है नी डैणे अरे बाली बोलती सूई भी है ना नी डैणे तू गई कलेजे नी डैणे तू कई कलेजे आरी बन के पाड़े लुतरीए मूह फटीए नारे वसदे थान उजाड़े और फिटीए तू फिटना दी फेटी एके दी है वैरन बस करनी लोहे दी चूईए उल्टी मैनू झाड़े अखी वेखे जग दे लोकी मैनू ने वड्यांदे शाहू लै गरीबा तोड़ी मेरे ही गुण गांदे तू पाड़े मैं जोड़ा पाटे दाज कसीदे कड़ा लज्जण कज्जण पत्ती राखी मैनू लोग सुनांदे इक नालों जे अडरा करके विथ पुआए पाड़े दुनिया विच दुनिया उसनू पाड़ू कह के झिड़के घूरे झाड़े एक रद्द वखेवा पावे कुर्ब होए ना उसदा मिलन वाले नू रब सच्चा मिलदा कढ के हाड़े मिलन वालिया नू जग पूजे सिमर उस नू जीवे गुरु विचोला आखे तो पैर उस दे पीवे पर इस जगत हनेरे अंदर समझन टावे टावे जिना जिना दे दिल अंदर जग दे नूरी दीवे जिना जिना दे दिल अंदर जग दे नूरी दीवे सो दोस्तो ए जिहड़ी कविता गैस करो कि लिखी हो सकती है कि इन्हां दी कलम तो यह निकलती है कहानी अनोखा झगड़ा अनोखा झगड़ा कि लिखी जी गैस करो तो कमेंट्स के जरूर दस्यो वैसे तो मैं हूं मेरा मैनू बड़ी जोर की मतलब फीलिंग आ रही है कि मैं आप ही दसदा खैर चलो खैर तुसीं भी लभ्यो तो तस्दीक करो जरूर ए लिखिया जी विधाता सिंह तीर होरां ने विधाता सिंह तीर साहब क्या बता बहुत ही खूबसूरत दिखते ने हमेशा की तरह वड्डे कवि ने वड्डा नाम है उन्हों का सूई ते कैंची का झगड़ा उ सोच सकते हैं अपने दिमाग नहीं उसकी गल तुहानू पता ही है कमाल है जी बहुत खूब सो दोस्तों मुल की लड़ाई आप देखा पहला भी ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਈ, ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਲ ਵੱਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਟਨ ਟਨ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਬਸ ਟਨ ਟਨ ਕੀ ਠਾਹ ਠਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਲੋ ਚੱਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਠਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਊਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਊਂ ਲੜ ਪਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਊਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 45 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੋ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਮੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਚਾਹ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੋ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ ਸੋਂਧੀ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਰੀਕਨੈਕਟ ਐਸਾ ਕੁਛ ਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
0: ਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਜੀ
1: ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਤਾ,
0: ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,
1: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ।
0: ਵੇਖ ਲੋ ਥੋਡੇ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ,
1: ਜਿੰਦਰਾ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ,
0: ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਾਬੀ,
1: ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ।
0: ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਣਵਾਈ।

कोई कर सानू वख नहीं सकदा, बेशक नहीं सकदा। शुक्र है सोचा नू चन्ना, कोई डक नहीं सकदा। कोई शीशा बन ना जावे वे, जो दिल दियां गल्लां पढ़दा ए। जे मैं हुण ओ किथे रह गई, जिन्नू तू याद करदा ए। जे मैं हुण ओ किथे रह गई, जिन्नू तू चेते करदा ए। साडा हिज

0: हाँ जी
1: ता नॉन मेडिकल विषय बहुत वधिया विषय है, और प्लस टू तो बाद बच्चा इंजीनियरिंग कर
0: इहदे
1: सकता
0: बारे थोड़ा दसो। हाँ जी,
1: है। हाँ,
0: कि
1: सो
0: जो तुहाडे को
1: मैं
0: नॉन मेडिकल च बच्चा कि कि सब्जेक्ट पढ़ रहा
1: फिजिक्स केमिस्ट्री ते मैथ
0: है? फिजिक्स,
1: तीन सब्जेक्ट
0: केमिस्ट्री,
1: जेड़े है
0: मैथ।
1: ये नॉन मेडिकल वाले बच्चे
0: एक
1: नूं
0: तरह ना
1: पढ़ने।
0: कोल तीन तरह की ऑप्शन है शुरू च ही, अगर तो बाद वो चाहे फिजिक्स करे चाहे केमिस्ट्री करे किसी को
1: बिल्कुल
0: कंटिन्यू कर सकता है।
1: बिल्कुल जी,
0: तीन तीन
1: बिल्कुल
0: ऑप्शन तो यही आ गई।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी,
0: बाकी पंजाबी ते
1: इंग्लिश के
0: वो तो
1: नाल।
0: है ही
1: हाँ
0: है
1: जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: जो जनरल सब्जेक्ट है।
1: ठीक।
0: तो इस जो बंदे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लिया, पीसीएम इन शॉर्ट आप बोल दें,
1: हाँ जी,
0: बच्चे
1: हाँ
0: इदा ही
1: जी,
0: बोल रहे कि पीसीएम रखे
1: हाँ
0: अपन,
1: जी, हाँ जी।
0: तो इन्हों के बारे थोड़ा जहा होर दसो भी की अगे स्कोप हो सकता है। हाँ
1: हाँ, फिजिक्स पहली गल आप इंजीनियरिंग की कर रहे थे,
0: जी,
1: वो मैं एक खास मार्के की गल तुहानू करना चाहना
0: हाँ जी,
1: कि जदों अज तो बच्चों के पेरेंट्स जदों पढ़ते सी उदों ये सोचा जाता सी कि इंजीनियरिंग सिविल वाली सब तो थले लैवल की समझी जाती सी,
0: जी
1: ते उस उपर वाली मकैनिकल समझा जाता सी, इलैक्ट्रीकल करो वो ज्यादा वधिया समझा जाता सी।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ते आज भी मैं देखा कि पेरेंट्स की करते कि बच्चे को इंजीनियरिंग के पा लगे वो अपने दिमाग उस समय की सोच के मुताबिक पाना चाहते हैं। पर
0: जी
1: हुण मैं सोचना कि कुछ इदा दी इंजीनियरिंग्स है कि वो इन्हां नालों बहुत ही बैटर हैं। ईवन मैं सिविल फील्ड नूं मैकेनिकल इलैक्ट्रिकल तो ज्यादा वधिया समझदा, उस बहुत ज्यादा एबजॉर्प्शन है इस वेले, क्योंकि साढ़े देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट तक बहुत काम चल रहा है,
0: बहुत
1: और
0: विकास हो
1: सिविल
0: रहा है।
1: फील्ड जो है बहुत वधिया। ईवन आर्किटेक्चर फील्ड,
0: हाँ
1: आई
0: जी,
1: नो ऐसे ऐसे बच्चे है जिन्होंने आर्किटेक्चर के बीटेक की है, और उन्हों की मतलब सालाना पैकेज 20-25 लाख उन्होंने इनिशियल मिल रहा है।
0: क्या बात
1: ते
0: है,
1: और पेरेंट्स अपनी ऑर्थोडॉक्स सोच करके कि लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ला, तो इलेक्ट्रिकल कर ला, वो थोड़ा जा उत्थे भी पेरेंट्स नूं अपने सोच नूं बदलना चाहिए
0: नवा
1: है।
0: आ गया बहुत कुछ जी। और
1: बहुत कुछ
0: जो
1: नवा आ गया,
0: जो
1: एरो नॉटिकल इंजीनियरिंग है बहुत स्कोप है,
0: हाँ जी,
1: फिर एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है
0: हाँ
1: वो
0: जी,
1: भी बहुत
0: बिल्कुल।
1: वधिया है। सो बच्चे नूं ये देखना चाहिए है कि जिथे
0: देखो
1: बच्चे की अच्छी एब्जॉर्प्शन है।
0: नैनो टेक्नोलॉजी,
1: हाँ,
0: देखो
1: बिल्कुल
0: वो आ रहा
1: बिल्कुल।
0: है, किन्ना कुछ नवा चीजें आ रही
1: हाँ जी,
0: ने।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो
1: ते वो मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सोच बदलनी चाहिए, थोड़ी इस लेवल ते लेनी चाहिए जो अज चल रहा है, जो रुझान चल रहा है उस हिसाब नाल चलना चाहिए है।
0: एक सब्जेक्ट जे बच्चा हुण मान लो प्लस टू कर गया एदे नाल ही, तो वो मैनू लगता है कि पायलट वगैरह भी बन सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, एनडीए एक बहुत बढ़िया है, साढ़े को बच्चे जाते हैं और इस टेस्ट देने जाते हैं एनडीए का, पर मैं देखा कि पास आउट पास परसेंटेज जी है रिटर्न के इन्नी ज्यादा नहीं होंगी।
0: जी
1: उसका कारण यह है कि बच्चे प्लस वन के स्पेशली मैं देखना कि नॉन बोर्ड क्लास होने करके
0: हाँ जी,
1: और बच्चे इन्ना हार्ड वर्क नहीं करते,
0: सीरियसली नहीं इन्होंने
1: नहीं
0: लेते
1: लेंदे,
0: बता।
1: और वो जरा सिलेबस जरा है वो ना किते होने करके एनडीए के क्लियर नहीं कर पाते मैं देखना।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, नुक्ता है, कि मैं देखता कई बारी साढ़े को बच्चे आते कई बारी कि वो कहणगे सर 6वीं तो लैके 10वीं तक का सानू हिस्ट्री की बुक चाहिए है, मैथ की बुक चाहिए है, वो की करनी है भाई,
1: ठीक।
0: मैं फलाना टेस्ट तैयार कर रहा जी, वो उन्हों चो एक सवाल आने हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो ये बड़ी वड्डी तुसीं जिहड़ी अहम गल जिहड़ी कही कीती आ कि जिहड़ियां क्लास, एक तां बच्चे नूं मैनूं लगदा कि अपणियां किताबां कदे बेचणियां नहीं चाहीदियां,
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: जिहड़ी मर्जी क्लास दे होए कोल ही रखे, क्यों?
1: दूसरे दूसरे जिहड़े नॉन बोर्ड क्लासां नूं बिल्कुल हल्के तरीके नाल जिहड़े बच्चे ले लैंदे आ वो
0: वो
1: भी
0: सीरियस
1: बड़ा
0: गल है
1: बहुत
0: वो।
1: ज्यादा नुकसान करदे आ अपना।
0: हाँ बिल्कुल जी,
1: और एनडीए दे विच मतलब अच्छा स्कोप है, और गल उत्थे ही है कि एनडीए दे विच भी जदों अगे इंटरव्यू फेस करदे आ बच्चे उदों भी मैं देखा कि इस पास परसेंटेज अगे बहुत घट हुंदी है, अराउंड 1 और 2% जिहड़े बच्चे आ उही एनडीए चो पास हुंदे आ।
0: बहुत
1: ईवन
0: कमी,
1: तुसीं सुणदे ही हो कि इंडियन आर्मी दे विच ऑफिसर की किन्नी कमी है,
0: बहुत कमी है,
1: और
0: बहुत कमी
1: 35-40 हज़ार। और कारण की है कि ऑफिसर उन्हां नूं चाहिए हुंदे आ बोल्ड बैलेंस्ड लीडरशिप
0: वो
1: क्वालिटीज,
0: वाले,
1: वो
0: बिल्कुल
1: वाले चाहिए, पर
0: बिल्कुल
1: साढ़े बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे वो इन्हां क्वालिटियों के पिछे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई दे जिहड़ा
0: हाँ
1: पढ़ रहा वो किताबी कीड़ा बनिया होया,
0: किताबी कीड़ा
1: वो ये
0: हो।
1: सोच नहीं रहा कि मैनू अच्छी फिजिक्स भी चाहिए है,
0: हाँ
1: मेरे च होर भी क्वालिटियां होनी चाहिए, आई शुड बी लीडर,
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਹ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਫਸਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
0: ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ
1: ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ
0: ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ
1: ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो न अंदर वह के जरना चंगा, नाल अणख दे जीवन दे लई न इन किसे दी परना चंगा। रल मिल के रहना सबने दुख सुख बिच

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुपताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं।

जिंद वादिया चे डुब गई जिसम तरी जांदा, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर क्या भी नहीं,

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवा जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई।

0: फीमेल एथलीट्स में मिले हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: लोग की बोलते बहुत कुछ होंगे, बहुत कोई पुरानी मेंटेलिटी दिए कुछ बयान आते होंगे, बट मैनू ऐसा लग रहा है कि अपना देश जरा बदल रहा है हूँ।
1: चेंजेस आ रहे हैं
0: चेंजेस
1: अपने,
0: बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आ रही ने।
1: बिल्कुल
0: हूँ कोई सक्सेस जो किसी कुड़ी नू मिलता हैगा, आई गैस सारे ही लोगों को उन्नी ही खुशी होंगी है जिवें
1: वेलकम
0: उन्होंने
1: करते
0: कोई
1: हैं।
0: उन्होंने
1: बिल्कुल
0: भैन उन्होंने कोई घर की परिवार की मैंबर ने कि जिवें वो खुश हुई। मैं आप मैच वेख्या से पीवी सिंधु वाला,
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
0: तुसी
1: जी ठीक
0: साढ़े घर चो कोई बैडमिंटन नहीं वेखता, कोई खेलता नहीं हैगा,
1: है जी।
0: सारे परिवार ने उत्थे घट्टो घट 20-25 जनों ने टीवी के अगे रह के मैच वेख्या। तो जो उन्हें सैमीफाइनल जितया तुम यकीन नहीं मनोगे, इन्ना असी नचे। मेरी
1: सही है, सही
0: आई
1: गल
0: एस सी
1: है,
0: सिलेक्शन होने के इन्ना नहीं लोग नचे होंगे जिन्ना उत्थे नचे
1: क्या
0: होंगे।
1: पता,
0: पूरे
1: वाकई
0: पूरे
1: वो
0: बाजार के
1: बिल्कुल
0: में जिस
1: पुरे
0: तरह का
1: शहर है,
0: माहौल सिका।
1: सही गल है
0: ते
1: ना।
0: कहने का भाव यही है कि अजकल का जो साडा सोसाइटी है वो बदल रही है, होपफुली अगर होर पॉजिटिव चेंजेस आनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: बट जे किसी कुड़ी नू रिकॉग्निशन मिलती है अपनी मेहनत ना, उन्हें रिकॉग्निशन हासिल की है। साक्षी मलिक हरियाणा तो
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: कहने
1: हाँ बिल्कुल
0: लोएस्ट लोएस्ट
1: बिल्कुल
0: एक्सरे शो हैगी हरियाणा
1: हाँ जी हाँ
0: दे,
1: जी
0: हरियाणा इन नॉर्दर्न इंडिया दे विच, बट स्टिल देखो कि उन्होंने रिकॉग्निशन मिली।
1: यानी एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग आप
0: एब्सोल्युटली
1: कहिए, तो ये सिल्वर लाइनिंग भी हुण जिहड़ी है धुप्प च तब्दील हुंदी जा रही है, ते क्लाउड जिहड़े है उन्हां नूं लगभग बस्ट कर ही लिया आपां, क्लाउड बस्टर हो चुके हैं,
0: इन्हें अब तुसी
1: उजाला आ रहा है।
0: सिविल सर्विसेज वेख लो, कोई तुसी मेडिकल दे कोई एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आंदा, सब च कुड़ियां अगे आ रहियां ने। अब हुणे
1: जी
0: बोर्ड दे रिजल्ट्स आए उदों कुड़ियां सब तों अगे सीगियां,
1: जी जी जी
0: कुड़ियां
1: जी
0: रिकॉग्निशन हासिल कर रहियां ने, मेहनत कर रहियां ने। असीं जस्ट जिवें अपने बच्चों वांग, आपां कुड़ी मुंडे लईए ना, आपां बच्चे ना ना
1: हाँ जी हाँ
0: लईए,
1: जी
0: जिवें
1: बिल्कुल
0: बच्चों नूं इक्को इक्को वर्गा आपां सपोर्ट देना, इक्को वर्गी
1: हाँ,
0: ग्रूमिंग देनी है।
1: फिर गल ही खत्म हो जाती है,
0: सारी मैं कह रहा सारी गल्लां दा अपना सार ही यही है
1: यही है
0: कि जदों
1: बिल्कुल
0: बच्चा वध रहा उग रहे हैं, पौधा उगता हूँ, बच्चा
1: बिल्कुल
0: उग रहा
1: हाँ
0: हैगा
1: जी हाँ
0: उदों
1: जी
0: आप उन्होंने प्रॉपर खाद देती, पानी लाता,
1: बिल्कुल
0: उदा
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: जी
0: लाता, ट्री गार्ड लाता, वो
1: बिल्कुल
0: बच्चे ने अपने आप ही एक वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा। उस तो
1: अगे
0: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेनी।
1: बिल्कुल सही जी, बहुत वधिया सर। आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू बच्चों नू साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहोगे?
0: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम भी मैं इस तरह ज़्यादा उम्र नहीं हैगी मेरी,
1: हाँ जी हाँ
0: और
1: जी
0: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होंदे सीगे पेरेंट्स नाल, मोबाइल इंटरनेट फेसबुक ये सब चीज़ां नहीं हुंदियां
1: जी
0: सीगियां।
1: जी जी
0: असीं आ के स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करदे सीगे, उन्हां नूं दसदे हुंदे सी कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया, साडे फ्रेंड्स ने ये
1: जी
0: कीता, साडे टीचर्स ने ये कीता। वो जड़ी एक प्रथा हैगी साडे देश की, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हुण बच्चे
1: बिल्कुल
0: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे, फेसबुक सारे के फेसबुक दे विच अकाउंट हैगे, मोबाइल दे गेम्स
1: वो एक
0: मोबाइल्स
1: हाँ बिल्कुल जी
0: तो लग जाएंगे। पेरेंट्स नूं चाहिदा है कि अपने बच्चों नूं घट्टो घट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन, उन्हां नूं पूछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया, कि स्कूल दे विच
1: जी
0: की होया, भावें
1: बिल्कुल
0: तुहानूं नॉलेज है या नहीं है। मैं मेडिकल च सी,
1: हाँ
0: मेरी मम्मी
1: जी
0: मैनूं पुछदे हुंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज च की गया, की कीता, की चीरा फाड़ी
1: ठीक
0: कीती,
1: हाँ जी हाँ जी
0: ये भी
1: ठीक
0: मैं
1: है,
0: उन्हां नूं दसदा हुंदा सीगा।
1: क्या
0: ते इस
1: बात है,
0: तरह का जदों तुहाडा कनेक्ट एस्टैबलिश होया ना, टेक माई वर्ड, तुहानूं पूरी लाइफ पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करने की लोड़ नहीं है। और जदों
1: जी
0: वड्डा भी हो जाऊगा तुहानूं दसूगा कि मम्मी मैं अज ये कीता, दसो तुहाडा क्या, तुहाडा कनेक्ट भी बना रहूगा, तुहाडा प्यार भी बना रहूगा, ते बच्चा भी तुहाडा जिहड़ा है वो बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया अज सारिया गल्लां करके, बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई। तो
0: थैंक यू शमी जी, थैंक यू।
1: दोस्तों अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज, ते बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों, ते इसी तरह ही आपां दुआबा करांगे, साडे दोस्त इसी तरह सुनते रहन, ते प्लीज़ शेयर इट लाइक इट, ते बहुत जल्दी आपां फिर हाजिर होवांगे एक नवे प्रोग्राम दे नाल, नवी शख्सियत दे नाल। धन्यवाद बहुत बहुत, ते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रब रखा।